0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के वेर क्वारो बीमार मैं पाचू ईटी यूनियो और रेडियो।

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के रे वेर क्वारो बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरोटा
1: इटी यूनियो और रेडियो।